कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं गम किसी राजे से आई बारात बाजे गाजे से आई बारात बाजे गाजे से।

मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास।

मीठी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए कहाँ पता थी।

0: राम के मन में सीता का ध्यान, प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
1: राम जन्म की बधाई है, बधाई है। राम जन्म की बधाई है।

किसी के हो जाने मुर्बान माँ अब न पताओरे आओरे आओरे आओरे मुर्बान माँ अब न पताओरे।

तुम आज किसी कहो जाने मुर्बान माँ अब न सतावे आवे आवे आवे मुर्बान माँ अब न सतावे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।